अपमान तोहे बने आवै। सतगुरु पातशाह महाराज जी दीन दुनिया नूं तारदे होए श्री गोइंदवाल साहब विखे महाराज गुरु अमरदास साहब जी सच्चे पातशाह महाराज कलयुग जीवां दा उद्धार कर रहे हन। धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी दी वडियाई अकबर बादशाह ने सुनना कीती है। अकबर बादशाह बड़ा हैरान होया है। धन सतगुरु पातशाह महाराज जी दी वडियाई सुन के प्रसन्न भी होया है, आश्चर्य भी होया है।

0: आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदर कर्म हो वै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो हो एह सच्ची बाणी। दीन दुनिया दे वाली सतगुरु सरवरे कायनात वालिए कुल आलम शब्द गुरु जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे सजे हुए दीवाना की हाजरी भर के अपने मनुखा जीवन नूं सफला बना रहे सरबत माई भाई धनता दे जोग वड़ पागे हो जो अपने रुझेवियां भरे समय विचों समा कढ के गुरु गोद अंदर जुड़ करके गुरबाणी दे जाप शब्द कीर्तन उपरंत सत्कार योग ज्ञानी बलविंदर सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा जामनी साहिब फिरोजपुर वाले उन्हां दे पासों लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार सरवण करके लाहा प्राप्त कर रहे सी। आओ मन बिरती एकाग्र करिए कोई रसना वांझी ना रहे। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी की बख्शिश फतेह का सिमरन अपनी रसना उत्ते लेके आईए। फतेह अंदर दो वार वाहेगुरु शब्द का उच्चारण किया गया। वाहेगुरु गुर मंत्र है जिहड़ा गुरु वालों बख्शिश होया है। मूल मंत्र है साडा जो पंज प्यारे सहबान श्री अकाल तख्त साहब जी की सिख रहत मर्यादा अनुसार दृढ़ करवाउंदे ने एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक। साडा गुर मंत्र है वाहेगुरु ते भाई गुरदास जी ने सत नाम मंत्र का जिक्र भी किया। चेते रखो वाहेगुरु गुरमंत्र का जाप करन नाल बंदे दा हौमे तो हंकार तो छुटकारा हुंदा है। वो कहिंदे ने वाहेगुरु गुरमंत्र है जप हौमे खोई हंकार खत्म होवेगा। जे आपां वाहेगुरु शब्द का उच्चारण करांगे वाहेगुरु का सिमरन करांगे तां हंकार इन्ना बलवान इन्ना ताकतवर है कोई बंदा भगवान दे राह ते तुरिया जावे हंकार उस इंसान दे राह दा रोड़ा बन के भगवान दे दर ते तुरे जा रहे इंसान नूं शैतान बना देंदा है। इन्ना ताकतवर है हंकार। ए जरूरी नहीं हुंदा कि जेड़ा बंदा गुरुद्वारे नहीं आउंदा जेड़ा बंदा नास्तक बिरती दा मालक है हंकार उन्नू लपेट विच लवेगा। चेते रखो कई बार गुरु दे ज्यादा नेड़े रहण वाले साडे वर्गे बंदे हंकार दी मार थले ज्यादा दबे हुंदे ने। कोई बंदा सेवा करदा है सेवा करदे दे मन अंदर हंकार घर कर जांदा है। वो कहिंदा सेवा ही शायद मैं कर रहा हां होर कोई बंदा मेरे जिन्नी सेवा कर ही नहीं सकदा। कोई बंदा कहिंदा मेरे जिन्ना कोई नितनेमी नहीं है। किसे बंदे दे मन अंदर हंकार आउंदा है कि मैं वड्डा दानी या गुरु घर विच इन्ना दान करके आउंदा हां नितनेम बंदा घर विच करदा ते बंदे नूं दूसरे बंदे जिहड़े ने नितनेमी नजर नहीं आउंदे। कई बार वो कहिंदे शायद मैं ही नितनेमी हां। चेते रखो गुरु घर दे विच संगती रूप अंदर जुड़ बैठन ते वार वार जोर दिता है। इत्थे आवांगे ते फिर बंदे दे मन च हंकार नहीं आवेगा। बंदा घर च बाणी पढ़दा नितनेम करदा ते किते ना किते मन अंदर हंकार दा अंश पैदा हो जांदा है कि मैं नितनेमी हां। पर जदों बंदा अमृत वेले पातशाह दी हजूरी अंदर जुड़ बैंदा ते उन्हूं लगदा है मैं ते कुछ भी नहीं इत्थे ते एक दू एक चढ़ंदी आ कौन जाणे मेरा नाउं जी इत्थे ते मेरे नालों भी वड्डे नितनेमी बाणी पढ़न वाले गुरमुख प्यारे अपने आप नूं लुका के बैठे ने। उन्हां दे मन अंदर हंकार नहीं आउंदा। बंदा गुरु दी गोलक अंदर कुछ पैसे पाउंदा है जां कोई चीज गुरु घर विच भेटा करदा है ते चेते रखो उन्हूं शब्द दिता जांदा है दान पीए ने दान कीता है। पंजाब अंदर गुरुद्वारे इदां दे बहुतात रूप अंदर सानू मिलदे ने जिन्हां अंदर बाहरले बन्ने तख्तियां लगियां होईयां ने बोर्ड लगे हुए ने उत्ते लिखिया होया है दानी सज्जणा दे नाम जिन्हां ने दान कीता गुरु घर विच। दान ते भेटा दो शब्द ने। अंतर इन्हां दे विच दान अपने तो छोटे नूं दिता जांदा है ते भेटा अपने तो वड्डे दे चरणां विच रखी जांदी है। दान करन वाले दा हथ उत्ते हुंदा है दान लैण वाले दा हथ अड्डिया हुंदा है। दान करने वाला अपने आप नूं वड्डा सदाउंदा है कि मैं दान कीता है, लेकिन जिहड़ी भेटा है वह अपने तो वड्डे दे चरणां च अर्पण की जाती है। तुसी आ रहे हो गुरु जी गोलक अंदर सत्कार दे नाल, जो गुरमुख प्यारे जेडे गुरमत दे धारनी ने जो ओ गुरु की गोलक विच भी पाउंदे ने ते दोवें हथ ला के फिर भेटा गुरु की गोलक विच पाउंदे ने, इदा नहीं पाउंदे, उहनां दे पाउण दा वखरा तरीका होवेगा, ओ सत्कार नाल पाउंदे ने। इत्थे भेटा गुरु चरणां च अर्पण कीती जांदी है, कोई गुरु नूं दान नहीं कर सकदा। कोई बंदा कहे कि मैं गुरुद्वारे दान करके आया, इत्थे दान शब्द नहीं, इत्थे शब्द भेटा आवेगा। चेते रखो सच्चे पातशाह महाराज के पावन दरबार विच बैठे हां, निक्कियां निक्कियां गल्लां साडे अंदर हंकार दा अंश पैदा कर दियां ने, उन्हां गल्लां विचों कुछ दा जिक्र भगत रविदास जी ने अपनी पावन बाणी अंदर कीता है। कहिंदे हम बद कब कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबह ना नासी। कहिंदे हम बद कब, किसे बंदे नूं चार अखर लिखने आ गए ने, उह कहिंदा मेरे जिन्ना वड्डा सियाणा विद्वान कवि कोई नहीं। किसे दी कुल वड्डी है, कुल उच्ची है, खानदान उच्चा है, उह अपनी उच्ची कुल दा माण लई फिरदा है। हम पंडित, किसे कोल विद्वता होवे, ज्ञान होवे, मत्थे ते टिक्का गल जनेऊ तेड़ धोती छड्डी होई बोधी दा नां पंडित नहीं है, ब्राह्मण है। पंडित कहिंदे ने विद्वान नूं, सियाने नूं, आलम फाजल नूं, ओ सिखां विच वी होए ने। पंडित मोहन सिंह जी घरियाले वाले बहुत वड्डे कवीशर सन, उन्हां दे नाम नाल पंडित शब्द लगदा है। पंडित विद्वान नूं आखिया जांदा है। किसे कोले ज्ञान आ गया, उन्नू हंकार आ गया कि मेरे जिन्ना विद्वान ही कोई नहीं, ज्ञानवान ही कोई नहीं। हम पंडित हम जोगी सन्यासी, जिन्ना ने घर बार छड़ दिता, कन्नी मुंदरा पा लिया, पिंडे बभूत मल लई, ठूठा फड़ लिया, तुर पे, वो कहिंदे साडे वर्गा त्यागी जोगी सन्यासी कोई नहीं। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबह ना नासी। कहिंदे जिन्हां कोल ज्ञान है उन्हां नूं ज्ञान दा हंकार, गुण वालिआं नूं गुण दा हंकार। पर कहिंदे जे हंकार करी जांदे जे नानक ते नर असल खार। कहिंदे जिहड़े बंदे बिना कारण ही हंकार चुकी फिरदे ने, चेते रखो नानक ते नर असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत। असली खोते ने ओ बंदे, गधे ने जिहड़े बिना कारण ही गुणां दा हंकार लई फिरदे ने कि आ गुण साडे विच ने। इन्हां चीजां तों बचण वास्ते सरल सौखा राह सानू भाई साहिब भाई गुरदास जी ने दस दिता। कहिंदे बचना है हिरदे रूपी भांडा मानना, ते वाहेगुरु शब्द दी ओट ले लो। वाहेगुरु गुरमंत्र है जप हउमै खोई। कहिंदे इहनू जपण नाल हंकार तेरे अंदरों खत्म होवेगा, वरना हंकार इन्ना ताकतवर है भगवान दे दर ते पहुंचे हुए इंसान नूं वी शतान बना दिंदा है, बन गए। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, इबादत कीती है, रब दी बंदगी कीती है, इन्नी कीती कि रब साक्षात प्रगट होके कहिंदा मंग की मंगदा है, की मंगदा है, मंगदा फिर कहिंदा रब्बा जे देण लगा है ते फिर मैं तेरे कोलो मंगदा हां, ना मैं घर दे अंदर मरा, ना बाहर मरा, ना धरती ते मरा, ना आकाश विच मरा, ना मैनू पानी डोबे, ना मैनू अग साड़े, ना अस्त्र ना मरा, ना शस्त्र ना मरा, ना मैनू बंदा मार सके, ना मैनू जानवर मार सके। रब कोलो मंगदा, इबादत कीती है, बंदगी कीती, रब कहिंदा ठीक है, तू भगती कीती है, मंगदा जेड़ा मेरा धर्म है। रब ने आख्या तेनू मिल गया जो तू मंगे है। मन अंदर हंकार आ गया, कहिंदा हुण मैं अमर हो गया, मैं मरना नहीं है, मरना नहीं है। ते गुरु नानक साहिब कहिंदे जन्म तो पहला मरण दी गल होनी, इत्थे तेरा जन्म होया पर जन्म तो पहला तेरी मौत दा दिन लिखिया गया, मरण लिखाए मंडल में आए। इत्थे जन्मंग ता मरनंग, ਇੱਥੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਗਯੋ ਰਾਵਣ ਗਯੋ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਮਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੋ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਕੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਬ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
0: Tham paad ke Nar Singh de roop andar Parmatma vishesh karj Harnaksh da ant karan vaste pragat hoya. Adda tad sri sher da adda manukh da ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰੇ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜੈਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲਵਈ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਜੈਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋਪਾਂ ਦਣ ਦਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਯੁੱਧ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗੰਡਾਮਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 1000 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੰਡਾ ਮਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੀਰ ਨਦੇੜ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 5 ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇਹ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਅੰਦਰ ਭੇਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ।

मुकर नहीं कहना, मुकर दा अर्थ हुंदा मुकर जाना। जो मुकर कहने पोला एदा अर्थ हुंदा शीशा, जिदे च आपां मुंह वेखदे आ ओह वाला शीशा। सो पोह पंबद जो बास बस्त है, मुकर माह जैसे शा।

0: आश्रम उचारण नहीं करना, अर्थ वेले आश्रम ज्ञानी आपे उचारण करेगा, समझण वेले आश्रम ही अर्थ निकलेगा, पर आश्रम पाठ एड़े दे कन्ने तो बिना जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता है ध्यान नाल इदां ही करना।
1: कोई पाईऐ रे पुरख विधाता, पार ब्रह्म कै रंग राता, मेरे मन की दुरमत मालक होए, कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता, गर्भ गर्भ पढ़ै कही ना लेखै, जिस भेटिया

0: दशहरा पाठ साध संगत जी दशहरा ही उच्चारण करना कहते दशहरा ना कह दिता।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
0: साध संगत जी कई गुरमुख कथा इधरों उधरों सुन के सीख लेंदे ने ते फिर साध संगत जी गुरु अस्थाना ते तर्क करन लग जांदे इन्हां पंक्तियां दा आसरा लैके कहिंदे ने के गुरबाणी च इह गल लिखी है तीर्थ नहावण जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ ते नाम ही है। हां साध संगत जी तीर्थां ते जाना ते परमेश्वर दा नाम जपना उहदे तों वड्डा है पर साध संगत जी सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दी बाणी बेअंत बचन ऐसे कर दी है कि जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजी। गुर अस्थाना ते जाके जिथे गुरु की चरण शो प्राप्त होवे उथे नतमस्तक होना ये सिख दा कर्म है। सो साध संगत जी ए नहीं एक तीर्थ ते नहाउण दे नाल ए सोच लेना कि जी इस तीर्थ विशेष अठाठा तीर्थां ते जाके परमेश्वर दे नाम तो टुट जाना ओ साध संगत जी अजोगता है। गरीब नवाज दियां ने भी जदों तीर्थां ते जाके जेड़े साध संगत जी लोग साधु बैठे सन उन्हां नूं तीर्थां दा भ्रमण करन तो रोकण दी बजाए परमेश्वर दे नाम दा उपदेश दिता भी तीर्थां ते जाना जाओ महाराज कहते तीर्थां नूं छड्ड ही दिओ। जे तीर्थां नूं छड्डण दी गल्ल है ते तीसरे पातशाह महाराज तीर्थां ते जाण वाले लोकां नूं जिहड़ा लगा होया टैक्सी ओह सरकार नूं कह के माफ क्यों करवाया। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज दियां ने जिहड़ा हिंदू धर्म दे तीर्थां ते जदों लोक जांदे उहनां नूं टैक्स अदा करना पैंदा सी। तीसरे पातशाह महाराज दी जदों साध संगत जी तीर्थ रटन करन वास्ते गए ते महाराज दियां दे नाल लखां दा इकट्ठ सी। क्यों? क्योंकि मौके दी हकूमत ने सतगुरु जी नूं इह कहा सी कि जे तुसीं तीर्थां ते जांदे तुहाडे नाल जाण वाले नूं किसे नूं टैक्स नहीं देना पवेगा। ते लोकां ने इह वी लालच कीता कि गुरु अमरदास महाराज चले नाल तीर्थां दी यात्रा फ्री होवेगी। ते साध संगत जी फिर महाराज दियां ने यात्रा तों आण के उहनां नूं इह गल कही कि भाई ये तीर्थां ते जाण दा टैक्स जिहड़ा बंद कर दिओ ते सरकार ने बंद भी कीता। सो साध संगत जी मेरा इत्थे कहण दा मतलब यह नहीं कि सानू तीर्थां ते जाना चाहिदा जां गुरु साहिब ने प्रेरिया नहीं। साध संगत जी गुर अस्थाना नूं तीर्थां दा नां दे के गुर अस्थाना तो संगत नूं तोड़ना सचखंड श्री हरिमंदर साहिब वर्गी पवित्र अस्थान गोइंदवाल साहिब वर्गे सतगुरु जी दे बख्शे होए ओ साध संगत जी धर्म दे तीर्थ जो साडे हन उन्हां दी निंदिया करनी ओ महापाप है। सो ऐसे पाप नूं सुणन तों ते बोलण तों अपने आप नूं बचाउणा। हां सतगुरु जी दा नाम सारिआं तों श्रोमणी है पर जिथे सतगुरु जी बैठ जाण ओ थां शोभनीक है। उस अस्थान ते जाके जो सिख नूं सुकून मिलना चाहिदा है छोटे साहिबजादियां दे शहीदी स्थान ते जाके जो सिख नूं सुकून मिलना है ओ होर किते मिल सकदा है। रूह साध संगत जी तपदी होई सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दी परिक्रमा बारे भाई साहिब भाई वीर सिंह जी लिखदे के जिवें सुक्का होया साध संगत जी मन होवे जिहदे च बिलकुल जान ना होवे मरी जावे ओ सचखंड दी परिक्रमा च जाके हरिमंदर साहिब दी च बह जावे ओ मरिया होया मन सुक्का होया मन वी हरिया हो जांदा। सो साध संगत जी भावना वाले गुरसिखां नूं पढ़िए उहनां दे जीवन नूं जांचिए। हांजी।

मात पिता भाई सुत बनता कहो को है का रहाओ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु न बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझै कहत।

वै मोन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोबिंद चरणन की सुर नर मोन जन तिनहु ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधव गर्भ पर हारी चरण

0: पाठ साध संगत जी इकट्ठा ही पाठ है। सो मद एदा नखेड़ना नहीं ज्यादा, मदकर सो मद कर पर पाव पा अखर सारे शुद्ध उच्चारण करने। मान सो मद कर करो चरण हिरदे धरो रसन अमृत राम नाम पाखो।
1: मेरी प्रीत गोबिंद स्यो जिन घटे मैं तो मोल महगी लई जी सटे रहाओ। साध संगत बिना
0: पाठ कसके करना सटे नहीं कहना, जिमे ज्ञानी जी ने पिछला पाठ घटे पोला सटे सस्से ते अदक दा प्रभाव दे के।
1: साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेन।

हर हर हर जस घूमर पावहो मिल सत संग ओ महाराम। आओ सखी हर मेल मिलाहा सुन हर कथा नाम लै लाहा। हर हर कृपा धार गुर मिलहो गुर मिले हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा।

मन बेचैन है, चिंता तुर है, दुखी है, चेहरा दसद अखा दस। मन खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, चेहरा दसद। पर तन नू चोट लग गई है, कोई जख्म कोई पीड़ा मन महसूस करता। तन का प्रभाव मन ते पैंदा है, मन का प्रभाव तन ते पैंदा है। पर मैं फिर अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तन नू भोजन चाहिदा ही चाहिदा। और ये भी मैं अर्ज करा, चूंकि हवा तो बिना जीवना एक सैकेंड भी औखा है, इस वास्ते प्रभु ने आम बनाई है। कोई मनुख हवा कमाण वास्ते एक शहर तो दूजे शहर नहीं जाता, अपने घर तो बाहर नहीं जाता, एक मुल्क तो दूजे मुल्क नहीं जाता। तो प्रभु ने पानी की भी बारिश की हुई है, दरिया भी चलाए हुए ने, पर रोटियां दे दरिया नहीं चलते, रोटियां दी बारिश नहीं आती। ये भी मैज करते हैं, एक कमानी पैंदी है, पकानी पैंदी है, इहदे दरिया नहीं चलते, इहदी बारिश नहीं आती। तन भोजन का पुतला है, हवा की तरह पानी की तरह। यह भोजन आम क्यों नहीं बनाया प्रभु ने? इस वास्ते मनुख दे राही कुछ विकास होवे, ये भोजन इस तो कुछ करवावे। रेलां मोटरां गड्डियां बनिया ने, सड़कां बनिया ने, बिल्डिंगां बनिया ने, दो रोटियां बनवा रही ने, और कौन बनवा रहा है? इन्नी जिहड़ी हलचल है कौन करा रहा है? भोजन करा रहा है, रोटी करा रही है। जी किधरे रोटियां दी भी बारिश आउंदी, रोटियां दे भी दरिया चलदे, ते दरियावां दे कंडे मनुख पिया रहना सी, एवें ही सुता ही रहना सी, 24 घंटे कख नहीं करना सी। इतना जो विकास होया है मनुख तो, ये भोजन ने कराया। सब भोजन का विकास है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बहुत वड्डा व्यापारी है, यकीन जानो सब भोजन का विकास है और कुछ भी नहीं है। भजन ने भी बड़ा विकास कराया है। कोई फकीर है, कोई संत है, कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई दार्शनिक है, कोई चिंतक है, कोई भगत है, कोई जोगी है, कोई सन्यासी है, कोई उदासी है। इतना लंबा चौड़ा पसारा भजन ने कराया, मन दी भुख ने कराया। मन विच भजन दी भुख ना आउंदी ते कौन जोगी, कौन संत, कौन भगत, कौन सन्यासी, कौन उदासी, कौन सन्यासी बनना सी, किसने बनना सी, किसने फकीर बनना सी? भजन दी भुख ने संत पैदा कीते, भगत पैदा कीते, जोगी पैदा कीते, सन्यासी पैदा कीते। भोजन दी भुख ने इंजीनियर पैदा कीते, डॉक्टर पैदा कीते, लॉयर पैदा कीते, व्यापारी पैदा कीते, कारोबारी पैदा कीते। बड़ा विकास होया, बहुत विकास होया। गहराई नल लेना जरा। हुण दूसरा नुक्ता मैं पेश करन लगा। अगर भोजन की किसी नूं भुख ना लगे और ढंग दी ना लगे, आयुर्वेद आचार्य कहिंदे ने इहदा तन रोगी है, रोगी है। रोगी नूं भुख नहीं लगदी। मैं इसका जाती तजर्बा पिछले साल मैनू हो गया, किधरे मैनू लू लग गई, पिछले साल की गल है। उपर अलवर दे कोल एक पहाड़ है, ते 3-4 साल तो राजस्थान विच बारिश नहीं पै रही। प्यासे मोर हजारां दी तादाद दे जंगलां च मर गए, हिरन मर गए, सांबर मर गए। अठ दस वड्डे मंदिर ने अलवर विच, उन्हां दीआं सोसाइटियां ने बहुत वड्डे वड्डे टप उपर पहाड़ां ते रखे, ते ट्रैक्टरां दे राही टैंकरां दे राही पानी पहुंचाया। मेरे कोल भी आए, कहने लगे कोई उद्दम करो तुसी भी,
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖੱਖਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹਰਿਆਵਲ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜੀਪ ਦੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰ ਲੂਹ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੂਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਸੀ। ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਨੀ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

हसेव थके कर हाथ न आए, पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत्स्यों किंसी पदमा पत पाए। आद अनंत अगाध अद्वैक्ष पूत पवेख भवान अभय है अंत विहीन अनातम आप अदाग अदोक।

0: निंदा की आउंदी है गल नू घटा के बयान करना, खुशामद की है गल नू वधा के बयान करना, दोवें झूठ ने। दोहां नाल मन मैला हुंदा है, दोहां नाल मनुख परमात्मा तो दूर हुंदा है। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज रोकदे ने, उस्तत निंदा दो ते आगे खोजे पद निर्वाना, पर जन नानक एव खेल कठन है कि नहु गुरुमुख जाना। औखी खेड है कि मनुख निंदा भी ना करे ते उपमा भी ना करे, या मनुख घटा के गल करदा है या वधा के करदा है। अक्सर वैरी दी गल मनुख घटा के करदा है, अंदर ईरखा है, जलन है, ते मनुख घटा के गल करदा है, निंदा करदा है। अंदर कोई लालसा ते लोभ है, ते मनुख खुशामद करदा है, वधा के गल करदा है। फुल नूं कंडा कह देना ये निंदा है, गल घटा के बयान कीती गई है। पर कंडे नूं फुल कह देना ये खुशामद है, गल वधा के बयान कीती गई है। इन्हां दोहां नाल मन मैला हुंदा है। फुल नूं भावें कंडा कहिए, भावें कंडे नूं फुल कह दईए। मैं कई दफा हैरान होना, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस तरह के पुरुष निरपक्ष आते ने, पक्षपाती नहीं आते। भाई गुरुदास जी ने एक लंबी चौड़ी पौड़ी विच एक वार्ता लिखी, उसका भी सूक्ष्म जिहा रूप में थोड़े सामने रख दें। दुर्योधन श्री कृष्ण जी दे पास गए, कहने लगे भगवान जितने तुसी सखा अर्जन दे हो मेरे भी हो, जितना संबंध थोड़ा उन्हां नाल है मेरे नाल भी है, साड़ी मदद करो तुसी, मैं थोड़े कोल आया फरियाद लेके। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। श्री कृष्ण ने कहा एक मैं हां एक मेरी फौज है, तू दोहां दे च एक नू चुन सकदा है, या मेरी फौज ले ले तेरे पक्ष दे च लड़ेगी, या तू मैनू ले ले मैं तेरे पक्ष च खड़ा हो जावांगा। राजनैतिक बंदा सी दुर्योधन, धार्मिक ते है नहीं सी, संसारी बार मुखी मनुख सी, बार मनुख जिसका सब कुछ बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदरों सोचता है मौका मिल गया, कल्ले कृष्ण नूं मैं की करना, महाराज फिर फौज ही दे दो। कृष्ण ने कहा ठीक, मेरी फौज तेरे पक्ष दे च खड़ी होवेगी। अर्जुन आया है चरणा ते मत्था टेक है, श्री कृष्ण कहने ने तू देरी नाल आया। दुर्योधन ने मंग की थी सी, ते मैं कह दिता सी या मेरी फौज ले ले या मैनू, फौज ते उसने मंग ली है, सिपाही ते उसने मन, सेना ते उसने मंग ली है, हुण ते मैं ही हां कल्ला। अर्जुन हाथ जोड़ के कहिंदा है भगवान जे ए अवसर मैनू पहले मिलदा मंगण दा ते मैं उदों भी थानू ही मंगना सी, थोड़ी सेना नू नहीं मंगना सी। तुसी मेरे पक्ष दे च खड़े हो गए तो फिर हार भी थोड़ी जित भी थोड़ी, अपना ते कुछ भी नहीं निश्चिंत, असी ते बेफिक्र हो जावांगे। संसार दे इतिहास दिच इस तरह पहली दफा होया है कि कृष्ण जी दी सेना दुर्योधन दे पक्ष च खड़ी है, स्वयं कृष्ण पांडवों दे पक्ष अर्जुन दे पक्ष च खड़े हैं। इस तरह दा फैसला कोई निरपक्ष मनुख कर सकता है, जो निरपक्ष है। जिन्हों लग लपेट नहीं है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे च औरंगजेब के कुछ गुण भी लिखे ने, हैरानगी है मैनू, जेदे हुक्म दे नाल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शहीद किए गए, जेदे राज पाठ दे दो साहबजादियां नू दीवारां चिणिया गया, दो लड़ाई दे शहीद होए, घर घाट तबाह होए, जिंदगी सारी संघर्ष दे बतीत होई, उस पुरश दियां कुछ खूबियां भी लिखते ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जफरनामा पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। श्री मुखवाक पातशाही दसवीं जफरनामा, नामा कहने चिट्ठी नु, जफर जित नु, जित दी चिट्ठी, जित दिया चिट्ठिया, हैरानगी दी गल, जित दी चिट्ठी, पिता शहीद हो गया, बच्चे शहीद हो गए, परिवार बिछड़ गया, घर घाट तबाह हो गए, फिर भी सतगुरु कहते ना औरंगजेब मेरी जित हुई है, तेरी हार हुई है। जित दिया चिट्ठियां लिखिया ने, ये पहुंचाइया गई अहमदनगर, जिन्हों पढ़ के तड़पदा ही रहा औरंगजेब। मुख्तसर में अर्ज करें इस गल नू, मैं बहुता लमकावा ना, सतगुरु ने खूबियां लिखिया ने, गुण लिखे ने, औरंगजेब तू अलल सुभा उठदा है, अमृत वेले उठदा है, ये तेरी बहुत वड्डी खूबी है। सूरज निकलन तो पहले पहले अमृत वेला होंदा है। साधना नवे नवा जो मनुख इस मार्ग ते चले, ए रुत ए समा बहुत वड्डा सहायक है, मददगार है। महाराज दी बाणी चौथे पैरे सुबह के, सुरतियां उपजे चाओ तिन, तिन दरिया वास्यों दोस्ती, मनमुख सच्चा नाम, मन देच मुख देच उस समय सच्चा नाम है, जो रात दा चौथा पैरे, चौथे पैरे अमृत वेला। तू अलल सुबह उठदा है, अमृत वेले नू इस्लाम देच कहने अल्लाह दी सुबह, सनातन मत देच कहने ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म दा मुहूर्त है, ब्रह्म दा चिंतन करना है, वो कम वो समा ब्रह्म दी याद वास्ते, प्रभु दी याद वास्ते। गुरमत देच इसनू अमृत वेला कहने। हां जिदी सुरत पक गई है उते किसे वक्त भी जप सकदा, उदे लई हर वक्त अमृत वेला है। पर जितने चिर तक जिंदगी अमृतमई नहीं होई, अमृत वेले दी मदद लेनी पएगी, लेनी पएगी, उस तो बिना गल नहीं बनेगी। ऐ औरंगजेब तो अलल सुबह उठदा है, दूसरा तू पंज वक्त दा पक्का नमाजी है, तू फजर दी नमाज भी पढ़दा, तू असर दी नमाज भी पढ़दा, तू जोहर दी नमाज भी पढ़दा, तू मगरब दी नमाज भी पढ़दा है, और तू रात दे वक्त इशा दी नमाज भी पढ़दा, शाम दे वक्त तू पंजे नमाजा पढ़दा, तू दो वक्त कुरान दी तलावत भी करदा है, ये भी तेरी खूबी है, पाठ भी करदा है, तू सवेरे भी पाठ करदा है, शामे भी करदा। औरंगजेब तेरी एक होर भी खूबी है, तू हाथ दे तस्बीह रखदा है, माला, और मणका फेरदा ही रहना है, अल्लाह हो अल्लाह हो, जे वेला बैठा हो ते करी जांदा है, ये भी तेरी खूबी है। जुम्मा रात नो भाव वीरवार दी रात नो जुम्मा रात कहंदे ने, तू जकात भी देना है, ये भी एक तेरी बहुत वड्डी खूबी है। ते रमजान दे महीने च तू पूरे 30 रोजे भी रखदा है, कुछ नहीं खांदा, तू रोजे भी रखदा है। ये खूबियां बयान करके फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, इतने गुणां दे होंदे होया इतनिया खूबियां दे होंदया औरंगजेब फिर भी तू शैतान है फरिश्ता नहीं है। फुल नो फुल कह दिता है कंडे नो कंडा, हुण कंडे नो कंडा कहना फुल नो फुल कहना यह सच्चाई है। कंडे नो फुल कह देना खुशामद है, फुल नो कंडा कह देना निंदा है। गल घटा के बयान करनी निंदा है, गल वधा के बयान करनी खुशामद है। कंडे नो कंडा कह देना फुल नो फुल कह देना ये सच है। अक्सर मनुख अधूरा सच बोलता है जो झूठ नालों भी पैड़ा होता है। अधूरा ज्ञान नियम हकीम ये जान नूं खतरा होता है। अधूरा सच की फुल नूं ते फुल आख देता है, हुण कंडे नूं कंडा कहना औखा है। जे कंडे नूं कंडा आखे ते चुभेगा, साडे ही कपड़े फाड़ेगा, साडा ही दामन चीरेगा, चलो की लेना सी। कदे कदाई कोई अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते प्रगट होंदे ने जो ऐलानिया फुल नो फुल कह देंदे ने, कंडे नो कंडा कह देंदे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे दी बाणी दे राही कहंदे ने, इतनी खूबियां दे होंदिया होया, इतने गुणा दे होंदिया होया औरंगजेब तू शैतान है फरिश्ता नहीं है। तो रामन नादानम के यजदा शनास, बरामद जतो का रहा दिल खराश। मैं तेन खुदा शनास नहीं मनदा, तेन खुदा दी कक समझ नहीं है। तू ओ कम कीते ने जेदे नाल लोगां दे दिलां नूं चोट पहुंची है। रब नाल जुड़िया होया मनुख कदम कदम ते लोगां दे दिलां नूं जोड़दा है, जोड़दा है। जफरनामे दी इक प्राचीन कहानी नूं भी सतगुरु ने अगे कीता है। उदा एक छोटा जिहा भाग मैं थोड़े सामने रखी दिया। मिडिल ईस्ट दे जिहड़े चार धर्म पैदा होए ना, पुराना सब तो यहूदी है, फिर ईसाई होए, फिर जरदरस्ती ते फिर इस्लाम। जिस तरह भारत दे सनातन मत सब तो पुराना है, फिर जैन मत, बौद्ध मत, फिर नवा धर्म सिख मत। चार ही धर्म भारत विच पैदा होए, चार ही धर्म मध्य पूर्व जो है मिडिल ईस्ट दे पैदा हुए, बाकियां सारियां इन्हां अठां दियां शाखां ही ने। दुनिया विच मूल रूप दे ये अठ ही ने। यहूदियां दा रैबरी पुरुष जो 3,500 साल पहले अंदाजन होया है, कोह तूर को कहंदे ने पहाड़ नूं, ते पहाड़ दा नां सी तूर। उसते चढ़ के रोज इबादत करदा सी, बंदगी करदा सी। मुहम्मद साहब भी एक पहाड़ ते जांदे सन, गार अजे भी बनी हुई है। हुण उत्थे तक सऊदी अरब दी गवर्नमेंट ने बकायदा सड़क बना दिती है, टनल बना दिती है, सुरंग बना दिती है। 8-10 मील दी वाट करके यात्रियां नूं जाना पैंदा सी, हाजियां नूं। हुण सिर्फ 3 मील दा रस्ता रह गया, जिथे बैठ के मोहम्मद साहब बंदगी करते सन, अल्लाहू दा जप करते सन। पहाड़ है। मैं हैरान हूं पछोखड़ जीवन दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी हेमकुंड नूं चुनिया। पहाड़ भारत दे चोटी दे ऋषि मुनि 90% पहाड़ां ते जप तप करते रहे, जमीन तो थोड़ा जिहा बुलंद उठ के कुछ न कुछ मदद मिलती होगी। खैर इस दी लमकाई ते मैं ना जावा। कोह तूर ते जांदा सी, एक दिन एक अयाली जिदे कुल 100-150 पेड़ा सन, जंगल चरंदा सी, जंगली च रहिंदा सी, पेड़ा दा दुध वेच के उन वेच के अपना गुजारा करदा सी। रात नूं भी जंगल ही रह जाना है। ਬਸ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਬੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਇਜ਼ ਭਾਵ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਮੈਦੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲਾ ਮਕਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਠਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਵਦੇਸੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਉਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਠਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਠਾਮ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਐਸੀ ਅਗੰਮੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਠਾਮ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਈ ਠਿੱਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਫਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਫਤਾਬ ਆਖੋ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਖੋ, ਆਫਤਾਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੂਰਜ ਆਖੋ, ਰਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਰਵੀ ਆਖੋ, ਭਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਤੇ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਮ ਆਖੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾ ਕਹਿ ਕਹਾਵੇ, ਕਹਾ ਮੈਂ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਕਹਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾ ਕਹਿ ਕਹਾਵੇ, ਕਹਾ ਮੈਂ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਂ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ। जितने भी तेरे नाम ने, जिस जिस नाम नाल तेनू याद कर देन को, इस अयाली ने सुनिया परमात्मा दा कोई घर थां ठिकाना नहीं है, सीमत ज्यों दी सोचनी सी विचारे दी, ला मकान ला शरीक उदा कोई शरीक नहीं है। हस पिया ए अयाली पेड़ा नू वापस ले आ उत्थे, कहिंदे ले खुदा गल ते तेरी बड़ी सुनदे हुंदे सी, पर अज पहली दफा पता चले तू मेरे वर्गा ही है। साडा भी कोई घर गाड कोई नहीं, तेरा भी कोई नहीं, साडा भी कोई शरीक कोई नहीं, ना मां है ना प्यो है ना भरा है ना भैन, कोई भी नहीं है, तेरा भी कोई नहीं। चलो हुण होर ते किसे नाल मेरी सांझ नहीं बनदी, क्यों? किसे दा कोई है, किसे दा कोई है, किसे दा कोई, अपना ते कोई नहीं। गुरु अंगद देव जी दा एक बड़ा कीमती श्लोक है, किस ही कोई कोय मंज निमाणी एक तो। कित्थों इसने फरियाद कीती, हे प्रभु हे खुदा, किसे दा कोई है, किसे दा कोई है, किसे दा कोई, अपना ते कोई नहीं, ना कोई भैन है ना कोई भरा है, ना माता ना पिता, कोई संतान नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई मां बाप नहीं, कुछ भी नहीं, कले। अज पता चले है तू भी कला है, तू भी कला है, ला शरीक है। एक कहिंदा मेरा मन बहुत खुश होया, ऐ खुदा बहुत खुश होया, अज पहली दफा पता चले है तू मेरी तरह है। पता है वापस आके इसने की कीता, संध्या हो चुकी सी, पेड़ा दा दुध चोया गर्म कीता, बाजरे दे दो प्रशादे बनाए ते लेके बैठा। कहिंदा खुदा साडे कोल ते 150 दे करीब पेड़ा भी हैं, पता नहीं तेरे कोल हैं के नहीं। ते ऐ हुण तू मेरे नाल आ बैठ के रोटी खा, दुध मैं गर्म कीता, तू ते तू रज जाएगा, फिर मैं बाद च पीवांगा। खुदा मैनू ए ते नहीं पता तेरे विच की गुण ने, पर तू मेरे गुण सुन ले। अज तक दुनिया परमात्मा दी सिफत सलाह करदी रही, उहदे गुणां नू सामने रख के। रूहे जमीन दे चिकित्सा दा पहला भगत होया जो अपने गुण रखदा पिया, कहिंदा खुदा मैनू ए ते नहीं पता तेरियां की खूबियां ने, पर मेरियां खूबियां सुन ले। तेनू कदी ताप चढ़े ना ते मैनू जड़ी बूटियां दा भी थोड़ा जिहा ज्ञान है, मैनू अपने प्यो तो मिलिया सी जो गुजर गया। ओ जड़ी बूटियां तोड़ के घोट के मैं तेनू पिला देंगा, तेरा ताप लै जाएगा। हे खुदा एक होर भी खूबी है मैनू, मेरे को तेरे कपड़े पाट जानना, मेरे कोल सुई धागा भी है, मैं रखे होया है, तेरे कपड़े सी देंगा। फिर होर भी सुन ले खुदा, किधरे तेरी जुत्ती पाट जाए ना, मैनू वह भी गंढण की जात आउंदी है। तू आ ते सही, मैं तेरिया जुतियां गंढांगा, मैं तेरे पाटे हुए कपड़े सियांगा। ए खुदा तू आ ते सही, जे किधरे तेनू थकेवा होवे ते मैनू मुठ्ठी चापी करन दी भी बड़ी वधिया जाच आउंदी है, मैं तेरा थकेवा ला देंगा। ते किधरे तेनू ताप चढ़ जाए ते मैं तेरा ताप भी छेती ला देंगा। हजरत मूसा लंघिया जा रहा सी, उन्हें ये बोल सुने, पहली दफा सुने भी कोई मनुख खुदा दे सामने अपने गुणा नू रख रहे है, और वो जो फरियाद कर रहा सी, तरले ले रहा सी, इनू ईरान दे एक महान संत मौलाना रोम ने मसनवी विच दर्ज कीता है। तू कुजाई ताशमम मम चाकरत, ए खुदा तू किथे है, मैं तेरी चाकरी करनी है, तेरी नौकरी करनी है, तेरी गुलामी करनी है, जो कुछ मैनू आउंदा मैं तेनू दस देता है। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਤੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤਾਸ਼ਵਮ ਮਮ ਚਾਕਰਤ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤਾਸ਼ਵਮ ਮਮ ਚਾਕਰਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਥੱਪੜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਦਾ, ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਲਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੀ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਟਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਸਤਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹੋ ਧੂਰ ਤੇ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਯਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਪਤਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋ, ਉਂਜ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਸੰਬੰਧ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੀ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਰੀ ਜੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਰੈਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਧਰੇ ਦਾ ਧਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਕੋਹ ਤੂਰ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੁੜਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਪ ਸਮਾਧੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਖੂਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ। ਖਾਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਸਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇਰੇ ਚ। ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੋਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਨਵੀ ਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਬਰਾਏ ਵਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ ਨੇ ਬਰਾਏ ਫਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਚਤੁਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਭੋਲਾ ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਂ। ਕਿਤਨੀ ਚਤੁਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਤਨਾ ਪਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਤਨਾ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਭੋਲਾ ਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬਰਾਏ ਵਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ ਨੇ ਬਰਾਏ ਫਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਆਯਾਲੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਝਿਆ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਝਿਆ, ਤੇਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾ ਤੇ ਰੀਝ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਕੋ ਕਰੇ ਕਛ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਹੋਂ ਕੇ ਕੀਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨ ਲੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀਵ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੰ ਭੋਲਾ ਨਾਥ, ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਭੋਲਾਪਨ ਚੱਲਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਦ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਨੈਵਾ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। शेख शरफ सूफी फकीर दे पोतरे ने गुरु नानक दे प्रश्न कर दिता सी, कौन हो तुसी, थोड़े बोला ने प्रभावित बड़ा कीता, थोड़े इत्थे आउन नाल फिजा बड़ी मुअत्तर हो गई है, तुसी साडे कोल की बैठे हो, इंज लगदा जिवें खुदा बैठ गए, कौन हो तुसी। जद बार बार शेख शरफ सूफी फकीर दे पोतरे ने पुछिया कौन हो तुसी, भावे व्याकरण दे ग्रामर दे ज्ञानी इसदे भिन्न भिन्न अर्थ करते ने, सतगुरु ने जवाब देते हैं, मानस मूरत नानक नाम, श्री राग का शब्द है, मनुख की मूर्ति मनुखा, मानस मूरत नानक नाम पर करणी कुत्ता दर फरमान, इतनी विनम्रता इतनी निर्माणता। जवसी साहब दियां चार पौड़ियां दे कुदरत दी विचार है, कुदरत कौन कहां विचार, वार ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। इहदे च पहले चानण पक्ष नूं साहिब लैंदे ने, असंख जप असंख वाह, कुदरत दे च की हो रहे यार, कौन कौन ने, बड़े जपीश्वर ने, बड़े तपीश्वर ने, बड़े भगत ने, बड़े ज्ञानी ने, बड़े दानी ने, असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। इस तरह का खुलासा सुखमनी साहब दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया, कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, पता नहीं कितना यह चानण पक्ष। फिर सतगुरु रात नू अगे करदे ने, रात भी है, असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हरामखोर, असंख अमर कर जाए, जो जबरदस्ती अपना हुक्म चलांदे ने, अगले दी तौफीक भी नहीं देखते कि अगला ये हुक्म मन भी सकेगा कि नहीं, इतनी उसकी समर्था भी है कि नहीं, पालना भी कर सकेगा कि नहीं, पर भार बोझ बन जाते ने, जबरदस्ती चलांदे, असंख अमर कर जाए जो, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए। इन्हां सारिआं दी गिणती करदिआं करदिआं करदिआं करदिआं तीन पंक्तियां दे ते मूल पंक्ति ये कुदरत कौन कहा विचार, पर इस पौड़ी दे चे नहीं है, तीन पौड़ियां दे च मूल पंक्ति यही है, कुदरत कौन कहा विचार। पता इस पौड़ी दे च केड़ी पंक्ति है, नानक नीच कहे विचार, नीचा दी गिणती करदिया करदिया, मूर्खा दी गिणती करदिया करदिया, पापिया दी गिणती करदिया करदिया, चोरां दी गिणती करदिया करदिया, फिर उसे कतार दे च उसे लाइन सतगुरु आप खड़े हो जाते। नानक नीच कहे विचार, इन्हां नीचा दी विचार करन वाला कौन है, गिणती कौन कर रहा है। नानक नीच कहे विचार, वारिया जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। एक होर पहलू भी इतिहासक में थोड़े सामने रखा, गोविंदवाल साहब की गल है, धन गुरु अमरदास जी महाराज अपने सिंघासन ते बैठे, गुरु अंगद देव जी महाराज दे साहबजादे दातू जी शरीकां दे भड़काए हुए क्रोध नाल भरे हुए आ गए, संगत च आउंदे आई खिच के लत मारी धन गुरु अमरदास नूं, सिंघासन ते साडा सी तुसी जा बैठे, सौगात ते साडी सी तुसी सिंघासन ते बैठ गए, खिच के सीने च लत मारी, सतगुरु थले गिर गए, बिरद शरीर सी 84 साल दी आयु, ओ जवान बिल्कुल नौजवान ताकतवर, गिरदियां सार सतगुरु अपने आप नूं संभालदे ने ते दातू दे चरण पकड़ लै, ते जो कुछ मुखार बिन तो बोले ने कवि संतोख सिंह जी ने गुरु प्रताप सूरज दे च इंज लिखे ने, एक तो सेवा करत रहे हूं, दुतिये बैते बिरद भए हूं, या ते अदक शरीर कठोरा। दातू जी मेरा शरीर बड़ा सख्त है, हड्डियां बड़ियां करड़ियां ने, क्योंकि एक उम्र मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, बुढ़ा हो गया, वृद्ध शरीर है, हड्डियां सख्त ने, चमड़ी सख्त है। दूसरा, मैं सेवा करड़ी करदा रहा, तप्पड़ झाड़दा रहा, लक्कड़ फाड़दा रहा, लंगर वंडदा रहा, लंगर बनांदा रहा, पानी ढौंदा रहा, करड़ी सेवा करदा रहा, उस नाल मेरा शरीर करड़ा हो गया। दूतीए बहते बिरध बहो, या ते अधिक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मर्दर न थोरा। थारे चरण, थोड़े पैर बड़े कोमल, बड़े कोमल, मेरा शरीर बड़ा सख्त, तुसी खिच के मैनू लत मारीए, थोड़े चरणा कोई मौत ते नहीं आई, कोई तकलीफ ते नहीं हुई। दातू हैरान, खिच के लत भी मैं मारी, ते हाथ जोड़ के मेरे अगों खड़े, इन्ने विनम्रता। मक्के दे इमाम ने खिच के गुरु नानक दे सीने च लत मारी है, जीवन मारी लत दे, केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी। कि कौन महान काफरां दा काफर सुत्ता पे, सीने च खिच के लत मारी। वकत दा रैबरी पुरुष, ब्रह्म ज्ञान दी मूर्ति, तमाम रब्बी शक्तियां नाल भरिया होया हिरदा, कि कौन महान काफरां दा काफर है, खुदा दे घर दी तरफ पैर करके सुत्ता पे। उत्थे सतगुरु कहंदे ने, ऐ इमाम, जिस पासे खुदा नहीं है उस पासे मेरे पैर कर दे, भाव ते इतना सी मैं जिधर देखना है ते खुदा ही है, ते खुदा ही। भाई गुरुदास जी लिखते ने, फिरिया मक्का कला दिखाई, सीने च लत खा के, और महान गाल सुन, बहुत वड्डी गाल है, कौन काफरां दा महान काफर सुत्ता पे, किसे सुहागण नूं वेसवा कह देना है, बहुत वड्डी गाल है, रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नूं काफर कह देना, ये केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी। पर सतगुर सहन कर गए, बाहर दी यात्रा सारी हंकार दी यात्रा है, अंदर दी यात्रा निरंकार दी और विनम्रता दी यात्रा है। बाहर दी यात्रा में सब कुछ हो जावा और सब तो अगे निकल जावा, अंदर दी यात्रा में सब कुछ खो जावा, मिट जावा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अंदर मनुख ना कुछ हो के सब कुछ हो जाता है, और बाहर सब कुछ होके भी कख नहीं होता, ये भी महस करते हैं, ये भी ध्यान गोचर है। बाहर अगे निकल के भी इनू पता चल जाता है कुछ भी नहीं, ठीक है मैं बथेरिया तो धन तो अगे निकल गया, शक्ति तो अगे निकल गया, प्रभुता तो अगे निकल गया, या कला दे चगे हैं, गुणा दे चगे हैं, रूप दे चगे हैं, रंग दे चगे हैं, जात दे चगे हैं, बाहर सब कुछ मिलके भी पता चल जाता है कुछ नहीं मिले, बाहर सब कुछ होके भी पता चलता है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अंदर जद मनुख सब कह देता है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और इस अवस्था ते पहुंच जाता है, सब कुछ हो जाता है, बूंद सागर हो जाती है, परमात्मा वर्गा हो जाता है। अंदर दी यात्रा विनम्रता दी यात्रा है, ना कुछ होने दी यात्रा है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। बड़ा सुंदर इस दे ते एक आलम ने अपना ख्याल दिता है, अज राह चुनार के सलामत न कुनत, समाप्ति करिए, रस्ते दिच इस ढंग नाल चल कि तेरे चलन नाल किसे दा रस्ता ना रुके, तू किसे दे रस्ते दा रोड़ा ना बने, तू किसे दे रस्ते दा कंडा ना बने, तू किसे चल दे मनुख दे पैरां नूं रोकी ना। अज राह चुनार के सलामत ना कुनद, कई मनुख मनुख नहीं आउंदे, रोड़े आउंदे ने, कंडे आउंदे ने, उन्हां दी कोशिश आउंदी है रोकिए, ये पछड़िया ही रहे। अज राह चुनार के सलामत ना कुनद, با خلق چونا زی کے قیامت نہ کند. خلقت دے مخلوق دے اس ڈھنگ نال رہ کہ تیرے رہن نال قیامت نہ ہوئے. کئی بندے بندے نہیں آتے, بس چنگاریاں ہی آتے ہیں. جتھے بیٹھے کوئی نہ کوئی پانبڑ تے بالن گے, کوئی نہ کوئی اگ تے لان گے, کچھ نہ کچھ تے چنگاری چھوڑن گے. با خلق چونا زی کے قیامت نہ کند, در مسجد گر روی کے چونا زو کے تو راہ, در پیش نہ خواند او امامد نہ کند. کدی تیرا خیال آوے نا کہ میں مسجد دے جانا ہے تے نماز پڑھنی ہے, اگے اگے ہو کے نماز نہ پڑھی, متاں تیرے اگر خیال پیدا ہو جائے میں امام ہاں اور میں خدا دے گھر دے وچ نمبر ون نا, میرا پہلا نمبر, باقی سب پچھڑے ہوئے, باقی کی نہیں کچھ بھی نہیں. اس گھر دے جو کچھ نہ کچھ ہو جاندہ ہے وہ سب کچھ ہو جاندہ ہے, اور جو سب کچھ ہون دی کوشش کردہ ہے کچھ بھی نہیں ہوندہ, کچھ بھی نہیں ہوندہ. ایک حقیقت ہے, ایک بہت سچائی ہے, سب کچھ ہون دے چا, سب کچھ ہو جاواں, اس دے چ منک جتنی محنت کردہ ہے یتن کردہ ہے او دا سواں بھاگ بھی منک اس دے چ نہیں لاندہ کہ میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں. اور واقعی جس دن یہ نہ کچھ ہو جاندہ ہے سب کچھ ہو جاندہ ہے. بیج نہ کچھ ہو کے ایک دن پھل بن جاندہ ہے, درخت بن جاندہ ہے, پر پہلے ہی تے مٹدا ہے, میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں. تو میں عرض کراں ایک باہر دی یاترا ہے, ایک اندر دی یاترا ہے, ایک ہنکار دی یاترا ہے, ایک نرنکار دی یاترا ہے. انہوں میں پورن طور تے دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دے چوں کھولنا سی, پر سما اپنے ڈھنگ نال جو ہے چلا گیا. دو منٹ میں آپ جی دے ہور لواں. اندر دی یاترا نو ہی دھیان سادھنا کہندے نیں. دھیان دا اندر جانا, دھیان دا باہر جانا, باہر دی یاترا ہے. باہر منک ادوں دکھی ہو جاندا جد اس تو کوئی اگے ہے, اس تو کوئی اگے ہے, کسی چیز دے چ وی اگے ہوئے, پربتا چگے, دن دے چگے, شکتی دے چگے, کلا دے چگے, گنا دے چگے, روپ رنگ دے چگے, کسی چیز دے چی اگے دکھی ہو جائے گا. تو ساری دنیا چ منکھاں نو بہتا دکھ اس گل دا ہوندا ہے اے اگے کہاں ہے. اپنے ہی دکھ منک دے بتھیرے ہوندے نے, پر ایک دکھ ہور سہیڑ لیندا ہے, اے اگے کیوں ہے, اس نو پرائی تات کہندے نے. مہاراج نے ذکر کیتا ہے, جس دے اندر تات پرائی ہووے تس دا کدے نہ ہووے بھلا. پرائی تات لئی پھردا ہے, اے اگے کیوں ہے. اندر دی یاترا جد کوئی اگے آندا ہے تو خوش ہو جاندا ہے, او دے قدماں وچ بیٹھ کے پرسن ہوندا ہے. ہر کے سنت بتاؤ مارگ, ہوں پیچھے لاگ چلی, پیچھے چلن وچ خوشی ہوندی اس کی, اتھے نہ کچھ ہون دے چ انہوں خوشی ملدی ہے. جد کوئی اگے جا رہے آندا ہے او دی امنگ ود جاندی ہے, ترنگ ود جاندی ہے, صرف میں ہی پربھو دے مارگ تے نہیں چلیا, کوئی ہور بھی چلیا ہے اور بہت اگے لنگے ہے, بہت اگے لنگے ہے, انہوں خوشی ملدی ہے. باہر دی یاترا جو اگے لنگے ہے جیلسی آندی ہے, ارشا آندی ہے, تات آندی ہے, پر اندر دی یاترا جد کوئی اگے لنگ جائے خوشی آندی ہے. اور اندر دی یاترا جس دن منک نہ کچھ ہو جاندا ہے اس دن پرماتما ہو جاندا ہے. اس دا جو پورن خلاصہ دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی نے بیان کیتا ہے, کسے وقت سدگر نے پھر ندی ناؤ سنجوگی میلے کرائے تے کھولاں گے اج اتنی سیوا پروان کرنی, صاحب رحمت کرن تھوڑے دھیان نو انتر مکھی لے جان. یاترا اندر دی ہوئے اور اندر دی یاترا وچ جڑے گن پنپ دے نے وہ کاغذی فل نہیں آتے, پلاسٹک دے فل نہیں آتے, اصلی فل آتے ہیں. انہوں نے جن جان آتی ہے, انہوں کی باقاعدہ بنیاد آتی ہے, اور وہ ایسے گن آتے ہیں جنہ کے اتنے پرماتما صدقے جانا ہے, پرماتما گلوکڑی چلینا ہے. اس واسطے بھگت پرماتما نو پیارے نے, بھگت سب تو نیڑے نے سدگر ساریاں نو, بھگتی دا تحفہ, بھگتی دا اے مہان دان جولی دچ پاوے تاکہ سڈا جیون دھن دھن ہو جائے. میں پھر عرض کراں, سن کے بھروسہ بندا ہے, پر بھروسہ سڈا کوئی توڑ سکدا ہے؟ نکی نکی گل تے بھروسے ٹٹ جاندے نے.
1: ओंकार सतनाम प्रतापुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद मुकुशरे शास्त्र खटो पिंज गिरन छुड़ जाए अंधलखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु रूप साथ संगतियो फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख दे दो रूप मने ने निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप विच ओ सूक्ष्म है अदृश्य है सरगुण रूप विच ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरखत दिखाई देंदा है जड़ा नहीं दिखाई देंदिया। शरीर दिखाई देंदा है आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनों इंज बयान करिए जो मकान का गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है कि जो बुनियाद का प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जो दरख्त का गुप्त हिस्सा है वो उस दियां जड़ां ने और जो जड़ां का प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। जो शरीर का गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है और जो आत्मा का प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। जो संसार का गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है ते जो निरंकार का प्रगट हिस्सा है वो संसार है। ये जो प्रगट है ये उस अदृश्य का उस अरूप का उस गुप्त का खेल है तमाशा है। जैसे सागर विच लहरां बन रही ने मिट रही ने बन रही ने मिट रही ने पर इन्हां लहरां का पैदा होना इन्हां लहरां का मिटना सब कुछ सागर विच है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परले सब परमात्मा दे विच हो रही है सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नूं खोजना नहीं है खोजना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गया है। ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है जाना उस दे कोल पैंदा जिहड़ा अपने तो दूर हो गया। ना उस दे कोल जाना है ना उसनू लभना है सिर्फ जागना है सुचेत होना है सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर है ते हाजिर हजूर है। रविदास कहिंदे ने ए हथ भी जितना तन तो दूर जा सकदा है वो ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो मेरे कोल से कि मैं उसकी तलाश करता रहा खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है अपने आप नु जगाना। धन सोती फिर सद जागनता। मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहिंदे ने असीं अधे जागे हुए हाँ पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देंदा है निरंकार नहीं। भोजन का रस आउंदा है भजन का नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु करदे हाँ किस नूं रस आउंदा है नहीं पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आउंदा है। रसना अधी जागी हुई है अधी सुती हुई। अखां अधियां जागियां ने अधियां सुतियां हुई ने। संसार नूं वेख रही ने निरंकार नूं नहीं। कन अधे जागे ने अधे सुते ने। ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ।

और जन मंगल गाव हो, ईश्वर नाही कबू ही एते, एह बिद मन मैं पाव हो। कुर पूरा पिट्यो वड भागी, जन नानक कतह ना थावो।

पत्थर तार। जदों उन्हें अपने औकन मन ले, गुरु अर्जन देव महाराज ने बांह पकड़ ली। बांह पकड़द्या सार श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने नजर मिलाई। बस नजर मिलदे एक कृपा हो गई लखू ताड़वी ते, उहदे सारे औगण गुरु ने खिंच लए, अपने वाले गुण गुरु ने उहदे विच भर दित्ते। इतिहास कहिंदा जिहनूं लोक ताड़विया डकैत चोर लुट खो वाला कहिंदे सी, ऐसी गुरु की कृपा होई उहनूं कमलिया संत कहण लग पए। तुसीं एक साखी सुनी होएगी, बहुत मकबूल है इतिहास विच, श्री गुरु अर्जन देव महाराज लाहौर अरदास करदे ने बुद्धू दे आवे पक्के। एक बार बंदा खलो के कहिंदा बुद्धू दे आवे कच्चे, ते आवे कच्चे रह गए। पता क्यों? ओ कहण वाला ओयो कमलिया सी जिनू लोक डकैत कहिंदे सी, ओदे बोलना च रब वस गया, ओदे कहण नाल आवे कच्चे रह गए। प्रभु जी वसै साध की रसना। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने कोई नजर मिलाई, एक बार कहा लखू रब दा नाम जपया कर, सतनाम श्री वाहिगुरु जप मन सतनाम सदा सतनाम। महाराज की होएगा? कहिंदे हलत पलत मुखुजल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। ओ लखू ताड़विया कमलिया साध संत बन गया। साध संगत है दर्शन देखती सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। की एदा हो जाए? एक प्रमाण पढ़ो बाणी च। साहब कहिंदे पूरा गुर अखे हो जा का मंत्र पढ़ो, तो नहीं याद रहेगा। पूरा गुर अखे हो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पिखे हुए संत। जदों गुरु ने अमृत दृष्टि पाई, इको दृष्टि नाल संत बना दिता। क्यों बनाया भाई? उहदा इको ही कारण है, उन्हें अपने औगण मन लै। असी औगण नहीं मनते, बस इत्थे गुरु खड़े। सिखा जिदन मन लेंगा कि मेरी गलती है, जिदन मन लेंगा कि मैं पाप कीते ने, ये नहीं कि गुरु नूं पता नहीं। गुरु नूं सब कुछ पता है, पर गुरु ये सिख्या खड़ा, तू आप मन अपनी जबान तो कि मेरे विच औगण ने, फिर गुरु मिल लेगा। एक बार पढ़ो सारे, कर कृपा मेरे

अखो सतनाम श्री समा समाप्त हो गया है, पर पांच सत मिनट में तोड़े लेने ध्यान नाल सुन। ये जरूरी नोट करियो, अपा सारे स्कूलों में पढ़े हैं, तोड़े बच्चे भी पढ़ते हैं। जिहड़ा बच्चा स्कूल तो घर आके होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट की हुंदा है? फेल। ताइयों आपां कहिंदे बेटे होमवर्क करो, ट्यूशन रखो, दो दो तीन तीन ट्यूशनां रखियां सबजैक्टां ने। जिहड़ा बच्चा स्कूलों आके घर विच होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट फेल। ते याद रखियो, आपां अरदास करके जे घर जाके आपां नाम ना जपिया रिजल्ट अपना भी फेल है, तुहाडा भी ते मेरा भी। जे आपां घर जाके वाहिगुरू ना ना जपिया रिजल्ट, तुहाडा भी फेल ते मेरा भी फेल। जे आपां गुरु दी बाणी ना पढ़ी अपना रिजल्ट फेल होना है। आ हुण वेखो तुसीं इहनां महीनियां च रिजल्ट बच्चियां दे निकलदे, जिन्हें पूरा साल पढ़िया है उहदे नंबर भी चंगे आउंदे। भाई जिन्हें पढ़ाई नहीं कीती उहदी कोई डिवीजन नहीं। यह गुरु का दर है। इथों आप होमवर्क लेके जाना है। होमवर्क किने दिता है? श्री गुरु रामदास महाराज ने की दिता है? कहिंदे गुर सतगुर का जो सिख खाए, पढ़ो गुर सतगुर का जो, नॉट गुर सिख, सिख जिन्हें सीखना शुरू कर दिता है, जिन्हें गुरसिख बन दे रस्ते ते तुर पे, भावे अजे अमृत नहीं छकया, सिख है भाई, वह सीखन लग पे, पढ़ो। वह की करे फिर? की कला गुरुद्वारे मत्था टेके? नहीं, पढ़ो गुर सतगुर का जो सिख खाए सो पल के उठ हर। एदा मतलब तुहानू याद है, सो पल के उठ हर नाम ते आवे, उद्दम करे पल के पर पाती।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आइए को रहना भरिए पाइए को रहना भरिए पाइए।

पौड़े बिन सतगुरु कने ना पायो, बिन सतगुरु कने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा।

0: पहला पर गड्डी लदी है पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डी खात पढ़िए है जेते बरस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत ही सब पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्व कल काल बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदार जे को तो कबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैवज खुम चढ़ाइए सनु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: हुक्म पे बड़ा जल रहे जल बिल्कुल ना होए ज्ञान का बड़ा मन रहे
1: और बिन ज्ञान ना होए पड़ी पड़ा होवे गुनगा साधन हमारी।

0: धुआ पूरा तपे का सत गिर धुआ हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में ऐसा सच रहे सबको सच सुनावे।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे शाला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते बड़ता।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म लाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज करन मन भावदे हर बुजर नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख मेहनत मरण वसारिया जरिया जो बनहारिया जरिया जो बनहारिया।

लोक महला पहला जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोया ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जीव हज थरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिए।

नमस्तल प्रणाम है समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामं विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सो धर्मं विभूते।

दानव देव फने दन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मै थल मै पल ही पल मै सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन कहे बहु पुंज खपेंगे साध समूह परसन फिर

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

उनका सद का सर्व सुख हुए। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचा रियायत देख तक फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी।

वर्णन सके महिमा जो तिहारी, हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी। आप ले ओ तुम कथा सुधारी, कहाँ लगे एहो कीट बखाने। महिमा तोर तो ही प्रभु जाने।

गुरु रूप सत्संग जीओ कथे प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उंज ते शरीर दा हर अंग अपने आप विच कारामद है, महान है और उसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। हर अंग महान है लेकिन फिर भी किसी जगह पे पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई दे दे। रास्ते का दिखाई देना बड़ा लाजमी है, फिर चलन वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है, चलन की तौफीक नहीं, रस्ता देखे आया व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं अर्ज करा चलन की तौफीक है, रस्ता ते नहीं दिखाई देता। ऐसा मनुख ऐसा त्यास पीता जाता है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकद्या पहुंच जाएगा। रह गई गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी, परमात्मा नूं जिहड़ा समझना है, जानना है, इते रस्ते दा वेखना है। इस तरह दे जानकार, जानन वाले, रस्ते नूं समझन वाले, इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहते ने खुदा ला शरीक है, ला मकान है, उदा कोई थां टिकाणा नहीं, उदा कोई शरीक नहीं, वो ला महदूद है, उदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत विच बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे ही कहते हैं बेअंत है, जात पात तो न्यारा है, रंग रूप तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, उदी कोई सीमा नहीं, बेअंत है, बेअंत है। सिख जगत विच भी करीबन करीबन ज्ञानी यही कुछ कहते हैं, बेअंत है, बेअंत है, लेकिन मनुख दा मन बेअंत तो प्रभावित नहीं। असीम है, असीम है, लेकिन मन उस असीम तो प्रभावित नहीं है। कारण सिर्फ रास्ता दिखाई देता है, मंजिल नहीं। जैसे किसी थां पे सी पहुंचना है कि किसी ने रास्ता दस देता या रास्ता दस रहा है नाल है तो रास्ता तो दिखाई दे रहा है, जिथे असी पहुंचना है उते नहीं। जगत विच परमात्मा दे रस्ते दे भी बड़े झगड़े ने, यह भी मैं अर्ज करते हैं। वक वक मंत्रां दा रटन ये रस्ता है, राम जपना, अल्लाहु जपना, ओम जपना, गोविंद जपना, वाहेगुरु जपना, सोहंग जपना, ओम जपना, इस सब मंत्र रस्ता ने, मार्ग ने। फिर मार्ग दे उते चलन दे अपने अपने ढंग ने, कोई दौड़दा है, कोई आस्ता चलदा है, कोई बहुत आस्ता चलदा है। तो चलन दे और रस्ते दे इतने झगड़े ने, इतने झगड़े ने, अक्सर मनुख रस्तियां च ही रह जांदा है। क्योंकि गल रस्ते दी मंजिल दी ते है नहीं। कई दफा चल चल के मनुख जब थकदा है, टुटदा है, ते पहुंचदा नहीं, रस्ते बदलदा भी है, ये भी महसूस करते हैं। क्योंकि मजहब बदलने दे, बदलना है, धर्म बदल लेना, शायद उत्थे कोई गल होवे।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ

व्यापारी ने कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी इन्ना नमाजियां देच इन्ना पूजा पाठ करने वालियां देच इन्ना बाणी दा जप करने वालियां देच मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां जान वालियां सेवक ने कोई करोड़ा च एक अद सेवक होंदा जो दाते तो प्रभावित है परमात्मा तो प्रभावित है खुदा तो प्रभावित है ईश्वर तो प्रभावित है और सतगुरु करोड़ां च एक कह रहे हैं। चलो ये मैं गिनती भी थोड़े सामने रखते हैं जो अनुभवी पुरुषां ने कीती है। किसी मस्जिद विच 10,000 दे करीब नमाजी हों किसी चर्च दे 10,000 मनुख बैठे उन प्रेर करन वास्ते किसी मंदिर दे 10,000 दा किधरे इकट्ठ हो गए पूजा करन लई दर्शन करन लई ते किसी गुरुद्वारे च किधरे 10,000 दे करीब सत्संगी बैठे होवन उन्हां च इक जग्यासू हुंदा जाग पिया थोड़ी समझ आ गई पता चल गया परमात्मा का पता चल गया समझ आ गई है। मैं दात तो प्रभावित सी दाते तो प्रभावित नहीं दाते दे प्रति जाग पिया दाते तो प्रभावित हो गया सिर्फ प्रभावित होया है सिर्फ प्रभावित होया पहले दिन वाले कहे शब्द में जरा दोहरा ही दया जिस तो मेरा मन प्रभावित नहीं मन उसकी मंग नहीं करता मन जिसकी मंग नहीं करता मन उसनों याद भी नहीं करता मन जिसनों याद नहीं करता इस शरीर उदी प्राप्ति लई कोई उद्यम नहीं करता कोई मेहनत नहीं करता कोई समा नहीं कढ़ता कोई संघर्ष नहीं करता इस तरह 10,000 दे इकट्ठ दे च मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे एक जगह आसू होंदा फिर 10,000 दे करीब जगह आसू होवन जो थोड़े जाग पए ने दाते तो प्रभावित ने दात तो नहीं दात ते है जो कुछ है पता चल गया परिवार एक दात है बच्चे एक दात ने धन संपदा एक दात है जीवन एक दात सूरज की रोशनी सानू दान दिच मिल रही है वगदी हुई पवन दान है बहुत कुछ जिसका असी कोई मुल नहीं चुकाया ते मिल जाता है दाता वो दे रहे है लेकिन 10,000 सत्संगियां दिचों कोई एक कद दाते तो प्रभावित हो गया है उसनों जग्यासू कहिंदे जाग पिया निरा सुत्ता होया नहीं जाग पिया मेरे एवें गुरुद्वारे नहीं आया कुछ समझ है सिर्फ एवें बाणी नहीं पढ़ रहा कुछ समझ है सिर्फ एवें ही नहीं जप कर रहा कुछ समझ है सिर्फ एवें ही नहीं हाथ विच गुटका लई बैठा कुछ समझ है उस जगे आसू ये आंकड़े बहुत गहरे अनुभवी पुरुषां ने इकट्ठे किए ने ते मैं थोड़े सामने जो उन्होंने मैं पढ़े थोड़ी जी समझ आई थोड़े सामने रख रहे हैं। 10,000 नमाजी किसी मस्जिद दे चोवन 10,000 पूजा पाठ करने वाले किसी मंदिर दे चोवन 10,000 दे करीब प्रेर करन वाले किसी चर्च दे च बैठे होवन 10,000 गुरसिख सत्संगी किसी गुरुद्वारे च बैठे होवन एक जगह सू होंदा बहुते नहीं होंदे एक होंदा जो जाग पिया समझ आ गई मेरी

ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਬੈਠ ਕਰਾਂ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਉ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉ ਦਰ ਦੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੇ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਚਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ, ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਗਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਅੰਧੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਐਸੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਐਸੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਭਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਸੇ ਲੰਗੜੇ, ਐਸੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਔਸਤਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧਲਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਅੰਧਾ, ਇਹ ਲੰਗੜਾ, ਇਹ ਟੁੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਣ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗ, ਦੇਖਦੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਦੇਖੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਦਿਖਾਈਏ, ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ,
ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए, कहबे को न सुरत न सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। कुछ बोल सका कुछ कह सका जवानी कोई नहीं, गूंगा। हे प्रभु तेरे बोल सुन सका कानी कोई नहीं, बैरा। भाई साहब भाई गुरुदास जी बैरा। हे गुरु तेरे बोल सुन सका मेरे कुल कन नहीं ने, और जिड़े कन मेरे कुल हैगे ने इहदे नाल मैं ते परिवार की गल सुन सकदा तेरी नहीं, मैं संसार दीयां गल्लां सुन सकदा तेरे नहीं, मैं बिखे नाद सुन सकदा तेरा गीत नहीं, मेरे कोल कन्ने कोई नहीं, तेरे कन्ना तक मैं अपने बोल पहुंचा सका मेरे कोल जबानी कोई नहीं। मनुख कोल जिहड़ी जबान है वध तो वध इहदे बोल पहुंचदे ने पुत्रां तक मित्रां तक परिवार तक। चलो किसी किसी के बोलों च बरकत आती, उन्होंने बोल राज दरबार तक भी पहुंच जाते हैं, राज घरानिया तक भी पहुंच जाते हैं। पर जगत विच कुछ ऐसे भी ने जिन्हों के बोल निरंकार तक पहुंचते हैं, जा का कहा दरगे चले, जिदा कहा होया दरगाह भी चलता है, जिदा बोलिया होया परमात्मा की दुनिया च भी चलता है, जिदा बोलिया होया परमात्मा भी सुनता है, ईश्वर भी सुनदा। जाका कहा दरगे चले। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं हे प्रभु मैं तेरे तक अपने बोल पहुंचा सका जबान ही कोई नहीं, रसना ही कोई नहीं, तेरे बोलों नू सुन सका मेरे कोल कान ही कोई नहीं। कैलीफोर्निया दे भ्रमण करदिया होया मैं गुरुद्वारिया च देख के दंग रह गया, 10 मिनट किधरे कीर्तन दे ज्यादा हो जान बैठना बड़ा औखा हो जाता है, 2-2 घंटे लंगर हार दे गप्पा मारदे रहेंगे, कोई टाइम ही नहीं देखता, वक्त ही नहीं देखता। फिर मैनू उत्थे भाई गुरदास जी की पंक्ति चेते आउंदी, हे प्रभु तेरे बोल सुन सका मेरे कोल कन्ने कोई नहीं, तेरे कन्ना तक मैं अपने बोल पहुंचा सका मेरे कोल जबान ही कोई नहीं, कहदे को ना सुरत ना सरवन सुनवे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए, मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए मन उन मन लेवल आइए। हे प्रभु जो गुरमत है जो तेरे विचार ने वो मेरा मन कबूल नहीं करता, नहीं मनता, कहिंदा कह पिया मन नहीं मनता, और जिहड़े मेरे विचार ने जो मेरी सोचनी वो तैनू कबूल नहीं, वो तैनू परवान ने। बड़ी कीमती गल कह दी है भाई गुरदास, जो तेरी सोचनी है हे गुरु ये मैनू कबूल नहीं, मैं नहीं मनता, जो मेरी सोचनी है वो तैनू कबूल नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े, संबंध किवें जुड़े। मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आई है। जो गुरु दी मत है जो गुरु दी सोचनी है जो गुरु दे विचार ने मन नहीं कबूल करता, और जो मन दी मत है जो मेरी सोचनी है जो मेरे विचार ने वो गुरु नू कबूल ने, तो संबंध किस तरह जुड़े, विचारां दी सांझी नहीं बनती। गुरु दे विचार मैनू कबूल नहीं, मेरे विचार गुरु नू कबूल नहीं, मेरे विचारां नाल गुरु सहमत नहीं है, और गुरु दे विचारां नाल मैं सहमत नहीं हां। भाई साहब भाई गुरदास जी, मन में गुरमत गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायिका कहाइए।
हे प्रभु जगत विच कोई टुंडा होवेगा, कोई लंगड़ा होवेगा, कोई अंधा होवेगा, कोई बहरा होवेगा, कोई गुंगा होवेगा, पर भाई गुरदास इत्थे कमाल कर दिन, मैं ते अंधा भी हाँ, बहरा भी हाँ, गुंगा भी हाँ, टुंडा भी हाँ, लंगड़ा भी हाँ, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बव नायक की नायका कहाई, किवें मैं तेनू कबूल हो सकदा। अंग अंग भंग, सारे अंग टुटे पैने भंग ने, ना पैर ना हथ, ना अखा ना कन, ना जबान, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, ऐसे बो नायक की नायका कहाई। सारे अंगां दी अपनी एक महानता है, पर रस्ते नू वेखण वास्ते अखां चाहीदियां, रस्ते ते चलन वास्ते पैर चाहिए। कुछ धार्मिक विद्वान ऐसा भी कहते ने, अगर पैर हैगे ने, श्रद्धा हैगी है, भावना हैगी है, ज्ञान नहीं है, वध तो वध भटकेगा, और भटकते भी कई दफा पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते, चलते तो पैर, किसी दिन भटक भटक के भी पहुंच जाएंगे। हुणे थानू भाई साहब भाई सुरजीत सिंह जी, जो बहुत सोहणे आलम ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना बारे दस रहे सन। भगत सूरदास ये बिंद्राबन तो चलिया सी, इस शौक नाल मेरे बोल भी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज होवन। उहदी एक पंक्ति दर्ज है सारंग राग, अंधा सी, नेत्रहीन, हुण बिंद्राबन तो अमृतसर तक पहुंचे किवें, पर उसका हौसला देखो, लाठी लेके चल पिया, पुछदा ही पुछदा, किधरे भटक जांदा सी लोकी रस्ते ते पा देंदे सी। ये मतवातर दिन भर चलदा सी, रात नूं कदी किसे रुख तले, कदी किसे पिंड च कट लैंदा, भटकदा भटकदा साढ़े तीन महीनों के अमृतसर पहुंच गया, अखा कोई नहीं, पहुंच गया। सतगुरु के चरणों से मत्था टेकया, मस्तक छुपया नहीं रहता है, भगत है, भावना नाल भरिया हुआ है। सतगुरु ने मौका दिता, सुना भाई, पर यह संगीतकार भी सी, राग दियां बारीकियां नूं भी जानदा सी। जद भी किसी दे अंदर परमात्मा प्रगट भी हुंदा है, गीत बन के आउंदा है, संगीत बन के आउंदा है, एवें नहीं गीता प्रगट होंदी। धन गुरु नानक दे अंदरों अकाल पुरख प्रगट होंदे ने, गीत बन के, संगीत बन के, वकत दा राग गांदे ने गुरु नानक, वकत दी राग नहीं गांदे। मरदानिया रबाब छेड़, बाणी आई है, बाणी मरदाने ते नहीं आई, गुरु नानक ते आई है, गाउंदे गुरु नानक आपने, मरदाना सिर्फ रबाब वजांदा, साज वजांदा। वकत दा राग गांदे ने, वकत दी राग नहीं गांदे ने गुरु नानक, कदी सोरठ पे गांदे ने, कदी मलार पे गांदे ने, कदी भैरो गा रहे ने, कदी मारू गा रहे ने, कदी मांझ गा रहे ने, कदी आसा गा रहे ने, कदी गौड़ी गा रहे ने, कदी सही राग गा रहे ने। वकत दा राग गांदे ने, वकत दी राग नहीं गांदे ने। कीर्तन सुनना होवे ते फिर मरदाने तो सुन लैंदे, पर जद बाणी नाजल होंदी है ते गुरु नानक नूं नाजल होंदी है, और वो बाणी नाजल होंदी है गीत बन के, संगीत बन के। भावें चौक विच बैठ के रविदास सारा दिन जुतियां ही गंढदा है, पर परमात्मा जद उसके हिरदे चो भी प्रगट होंदा है गीत बन के, संगीत बन के, रविदास की सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है, हैरानगी आउंदी है। गंढदा ते जुतियां इहनूं संगीत कित्थों आ गया। भावें दिन भर खड्डी ते बैठ के कबीर कपड़े ही बुणदा है, पर जब रब्बी कलाम अंदरों प्रगट होंदा है गीत बन के, संगीत बन के, कबीर दी सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। सारा दिन भावें कपड़ियां नूं ही छिंबदा है, नाम देव छिंब है, लोकी शूद्र कहिंदे ने, मंदिर तो ते मार मार के कढ दिता गया सी,
ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਉਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਂਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਛਾਇਆ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ? ਔਰ ਗਿਲਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ, ਸੂਦ ਸੂਦ ਕਰ ਮਾਰ ਉਠਾਇਓ, ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਬਾਪ ਬੈਠਲ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗਾਥਾ ਨਾ ਅਰਜ ਕਰਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੇਰ ਦੀਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਵਰਾ ਪੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪਿਛਵਾ ਲਿਆ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ। ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪੈ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਫਿਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ। 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ।